0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है, जो सिग्नेचर्स हुए, वो किस तरीके से हुए, क्या कुछ प्रोसेस रहा, क्या कुछ सांसदों का कहना है, क्या आपत्ति दर्ज कराई गई, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें।
1: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर के पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे। इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया,
0: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में। और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
1: नहीं, एकदम नहीं, हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे, इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है।
0: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया, 20 लोग आप बता रहे हैं कि
1: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ, इसलिए जो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा। और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
2: On that note, stepping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War-struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
9: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars, and that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pavan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
10: I think somehow they're scared, otherwise there is no need for them to deny permission.
9: Is the India block, you know, up on its last legs?
10: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhiji was, even to an extent Rajiv Gandhiji was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood, he made, then I said he has become more shallow.
9: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
10: I came into politics in 2007, and from then...
9: Two decades.
10: Two decades.
9: Yeah, amazing.
10: And it was a tough journey for me, and sometimes I felt like giving up, sometimes I feel like why the hell I did, I was in politics. I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way I said, okay, I was envious.
9: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
10: This man is the future of our country, and we need him.

0: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
4: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
0: The front.
5: Welcome back. My name is Reet Kaur Sahani, and you're watching NDTV. Well, it's double trouble for former Chief Minister Mamata Banerjee. Amid the rebellion headache, now Mamata Banerjee is facing legal heat. On one front, an FIR has now been registered against her over alleged communal remarks made ahead of the state elections, with complainants even accusing her of promoting communal disharmony through her speech. On the other hand, a separate probe has now been ordered into the alleged Rs. 635 crore advertising scam involving a prominent Kolkata-based ad agency. Now, this is believed to be close to the former chief minister. Authorities are now examining a series of high-value transactions routed through multiple bank accounts. NDTV learns that ED could also step into the probe and, in fact, even probe the money trail.
6: Amra achi bole na, apnara shobai bhalo achen. Ar jodi amra na thaki, kono din shirom ashe, ek second lagbe. একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে
7: বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে এরও তদন্ত হবে তদন্ত শুধু নয় মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো
5: Well, let's bring you more updates coming in at the Sabo. Well, the rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage. The list of rebel member parliaments is finally out. It's a lineup of about 20 rebels, but with number 13 conspicuously missing. Now, they will be meeting the Lok Sabha Speaker on Monday, staking claim to be the real TMC. And tomorrow, Chief Minister Shivendu Adhikari is likely to meet the rebel member parliaments again in New Delhi. Sources say that a big name will join the rebel ranks soon. Who will that be? Will it be someone from the inner circle of Mamata Banerjee? We already know that Kalyan Banerjee has openly criticized Abhishek Banerjee, branding him as arrogant. And now Abhishek Banerjee has broken his silence, saying that Kalyan Banerjee is senior to him and has the right to express his views.
8: से जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है जो सिग्नेचर्स हुए वो किस तरीके से हुए क्या कुछ प्रोसेस रहा क्या कुछ सांसदों का कहना है क्या आपत्ति दर्ज कराई गई अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें
9: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर के पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया
8: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं तमाम जो लोग हैं कल्याण बनर्जी कीर्ति आज़ाद उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें
9: नहीं एकदम नहीं हम अलग बैठेंगे अलग गुट से हम बैठेंगे इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है
8: जगदीश जी ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया 20 लोग आप बता रहे हैं कि
9: देखिए पहले जो इलेक्शन का बात हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी वो जो काम कर रहा है अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है हमारा मन में खूब पसंद हुआ, इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा और हमको जो डिमांड है उसका पास हम वो डिमांड रखेंगे और ये डिमांड पूरी करने के लिए शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
5: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: NFHS 6 would come to 20%. So that decline which has happened is going to further dip with all these focused intervention, and we are going to end this. This generation is going to see the end of child marriage. And because of the large movement which has undertaken, CMPOs have been appointed across the country, prosecutions have increased, case registrations are increasing. There is a fear of the law being created on child marriage because it was a mindset issue also, and we needed to create that prosecution thing also. With all these strong interventions, cases getting registered, interventions happening, people taking pledges, panchayats joining in the community events, all these things will catalyze into 2030 reaching the tipping point. And this NFHS 6 shows this major decline. Another is, one of the worst performing states have given much more decline. The national average is 3%, but Assam 6.5, West Bengal, Bihar, Jharkhand, they have gone further dip. They are dipping much more further than the national decline. National decline is 3%. But the states where the problem was acute, they have dipped much further. So that is a good indicator. And we at JRC know that this is going to end.
1: All right, Mr. Khan, my second question to you is, considering child marriage is a crime, what role has the law played in bringing down the percentage of child marriage? How effective then, sir, are legal interventions in dealing with this crime?
0: Yes, because, you know, as I said earlier, that it was an issue which was about changing mindsets. And when we want to change mindsets, we want to engage with the communities, we want to raise awareness. But on the other hand, we also need to see that the force of law is applied on people indulging in these crimes. Once cases get registered, and you know, the Child Marriage Prohibition Act is a very strong act. Anyone participating, being a part of it, or organizing it, all get prosecuted. When such prosecutions happen, when FIRs get registered, when police go and intervene in these child marriages, people realize that this is a crime. They realize that this is something which is illegal. And once cases getting registered, you know, it creates a widespread message across the society. So on the one side, of course, community engagement, engagement with panchayats, faith-based leaders, we are doing that. But on the other side, JRC partners across the country are actively working with law enforcement agencies and the child protection, child marriage prohibition officers to see that cases get registered. That sends a very strong message. So both prosecutions as well as engagements will lead this journey. And of course, our special focus on connecting people to skills, empowering girls, getting monitoring dropouts in schools, connecting them to schemes, making education more accessible to girls. These are also some of the things in which we are working actively with the government.
1: And cases will get registered when there is more awareness, is what?
0: Yes, yes, of course, of course.
1: Let me bring in the other panelists as well. Dr. Shailendra Pandya, my question is to you. Your organization works directly with communities. What changes are you seeing that statistics alone cannot capture?
2: सबसे बड़ा एक चेंज या बदलाव तो हम ये देखते हैं पिछले एक दशक में, पिछले एक डेकेड में, अगर एनएफएच 4 की बात करें, एनएफएच 5 की बात करें, आज एनएफएच 6 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जहां परसेंटेज तो बिल्कुल गिरा है बाल विवाह को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी समुदाय की सिस्टम की सोच में। आज मैं देखता हूं कि जहां पहले इंजंक्शन ऑर्डर सेक्शन 13 में जारी नहीं हो पाता था, जस्ट राइट चिल्ड्रन अलायंस के साथ मिलकर हमने लीगल इंटरवेंशन को भी सुनिश्चित किया है, तो आज मैं देखता हूँ ट्राइबल एरिया में मैं बिलोंग करता हूँ, उदयपुर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन से, वहां पहली बार इंजंक्शन ऑर्डर रिलीज होने लगे हैं। जनप्रतिनिधि जहां पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे कि समुदाय का वोट इन्वॉल्व होता है, हमारा बाल विवाह मुक्ति रथ उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा, उन्होंने ओथ लिया, प्लेज लिया कि हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत चाहते हैं। तो आज कहीं भी पर भी जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट बाल विवाह होने को लेकर नहीं देखने को मिलता है। हमने जैसा भी रविकांत सर कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, बाल संसद चिल्ड्रन पार्लियामेंट के माध्यम से उन बच्चियों को जो एडोलसेंट ग्रुप से बिलोंग करती हैं उनको अवेयर किया गया। आज एडोलसेंट ग्रुप के बच्चे ना केवल अपना बाल विवाह नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है जो बच्चे खुद रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंट आपने देखा राजस्थान से कई सारे केसेस आए जिसमें खुद बच्चियों ने कंप्लेन दिया है हमारी चाइल्ड लाइन को, हमारी टीम को, जस्ट राइट की टीम को, कि मेरा बाल विवाह रुका जाए। तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव समुदाय में, बच्चों में और सिस्टम में भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि चाहे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू था, लेकिन जितना लेकर उसको स्टेक होल्डर्स ओरियंट होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, वो उतना ट्रेनिंग शायद नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सारे फील्ड ऑफिसर्स ट्रेंड हुए, स्टेक होल्डर्स ट्रेंड हुए। मैं चाइल्ड राइट कमीशन में भी रहा हूँ, मैं देखता हूँ जितना ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पहले नहीं हो पा रहा था, उतना ट्रेनिंग अभी रिसेंट इन सब में हो पाया। तो डेफिनेटली समुदाय और सिस्टम दोनों पैरेलल अलग अलग काम नहीं कर सकते।
1: Well, it's so heartening to hear that children feel they have the agency to come forward and fight for their rights. Vandana ji, is naye survey mein ek bahut badi baat samne aayi hai ki jab ladkiyan zyada padhti hain to baal vivah kam hote hain. Aapki kya raaye hai is pe aur aapne apne gaon mein is badlav ko kaise dekha hai? How have you seen this change happen?
3: मेरे गांव में जब से मैं सरपंच हूँ तब से तो कोई चाइल्ड मैरिज हुई ही नहीं है, और आसपास के गांव में भी बहुत अवेयरनेस हो रही है इस मामले में। और अब वुमेन एजुकेशन बढ़ा है, इसका आंकड़ा बढ़ा है, और यहाँ पर जींद में यूनिवर्सिटी भी आ गई है, तो इसमें 80% तक हम बोल सकते हैं लड़कियां हैं, 20% ही जस्ट लड़के हैं इसमें। तो इससे बहुत अवेयरनेस आई है चाइल्ड मैरिजेस में, तो लड़कियां खुद अपने करियर को प्रायोरिटी दे रही हैं, और अब वो खुद विरोध करती हैं इस बात का कि हमें पहले करियर बनाना है, हमें पहले खुद अपने दिमाग को ग्रो करना है, अपने करियर को ग्रो करना है, तब जाके हम मैरिज करेंगे और काबिल होंगे तभी मैरिज करेंगे।
1: लेट्स टॉक टू करमिंदर जी एज वेल। आप सालों से एक CMPO के रूप में ग्राउंड पर काम कर रही है और बाल विवाह रोकने के लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। पिछले 10 साल में करमिंदर जी आपने ज़मीनी हालत कैसे बदलते हुए देखा है, और आपके हिसाब से ये बदलाव किस वजह से आया है, और किस किन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है इस बदलाव को लाने में?
4: जी, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है बाल विवाह के मामले में। एक तो 10 साल पहले जब हम देखते थे बाल विवाह के रीज़न अलग थे, उस वक्त बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की शादी कर दी जाती थी और अब अदले बदले में भी शादी होती थी, और पिछले दशक में काफ़ी बदलाव आया है। और इसमें जब लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ा, मास ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जैसे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, और अभी MDD ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हम सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हमने मिलके इतने अवेयरनेस प्रोग्राम करे हैं हज़ारों की संख्या में पर ईयर, और लड़कियों की शिक्षा पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करवाया है, और मिलके हमने जो कैंपेन चलाए स्कूलों में, कॉलेजों में, और हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, उनका ग्राउंड लेवल तक नेटवर्क है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो बिल्कुल फील्ड में होती है, तो हमने आंगनवाड़ी से लेके और अपर लेवल तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, और ना केवल बाल विवाह के बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बताया, बल्कि शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इसको भी हमने चर्चा का विषय बनाया कि जो शादी जो है वो बच्चों से चलने वाली नहीं है, और ना केवल बच्चों के हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और बच्चे अर्ली मदरहुड का शिकार भी होते हैं। इसके अलावा हमने कानूनी पहलू पे भी लोगों को जागरूक किया। अकेले रोहतक में देखें तो मैंने 10-12 FIR कराई हैं। एक मामले में हम सजा तक भी पहुँचे जिसमें जो लड़की के हस्बैंड को 10 साल तक की सज़ा हुई है। तो और अखबारों का हमने बहुत सहारा लिया, मीडिया का बहुत सहारा लिया, तो इससे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है लोगों में। जब गांव में एक शादी रुकवाने जाते हैं तो वहां पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो ये सोच भी रहे होते हैं कि हम अपनी नाबालिग लड़की की शादी करें, तो वो थोड़ा डर जाते हैं, और इससे क्या है बाल विवाह में काफ़ी फ़र्क आया।
1: So what's clear from this is, be it the media, be it those working at the grassroots level, be it the parents, children, or those in the powers of corridor, everyone has to play a role in eradicating child marriage. On that note, we're sitting to a short break. I'll be back with the panelists in moments from now.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: They say good food speaks for itself, but behind every dish lies a story of talent, a story of precision, a story of obsession, and a story of perfection. We're tracking down the finest culinary minds in the country. We're tracking down the icons and the innovators. The short list is ready. The kitchens are battlefields, because there's only one criterion, absolute excellence. The tables are set. Join me, Veer Sanghvi, for the NDTV Food Awards 2026. Thank you.
4: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it, and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
9: Really?
8: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
10: Some big breaking news coming in from West Bengal. Let's take you through it. We're learning that the Enforcement Directorate has searched Madan Mitra's residence in Dakineshwar. That's right, a search of Madan Mitra's Dakineshwar flat has now led to the recovery of some cash and documents. Details of
11: Welcome back. Dr. Pandya, we often look at law enforcement and grassroots activism as two separate pillars. But on the ground, sir, a legal ban only works if someone speaks up in time. JRC has been effective in creating collaborations and bringing the ecosystem together. How has the partnership between civil society networks and district administration evolved to catch these cases before a marriage takes place? How are you working together to turn local intelligence into immediate legal prevention?
12: JRC Alliance के through एक best innovation जो मुझे देखने को मिला field में, और जिसके best result भी हम लोग देख पा रहे हैं, वो ये था कि हम लोगों ने multiple activities को on field, on ground देखा। जैसे first हमारा था कि हम लोग community based जो हमारी networks हैं, like committees हैं, Mission Matsalya central government की बहुत पुरानी scheme चल रही है कि हम लोग चाहते हैं VCPC विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, ग्राम पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, और इनके थ्रू चाइल्ड राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर ऑन ग्राउंड किया जाए। लेकिन ये बहुत एक चिंता का विषय है कि वर्ष 2012 से अभी तक उस लेवल पर ही एक्टिव फंक्शनल नहीं हो पाई थी। तो जेआरसी के थ्रू जो मैं एक बेस्ट पार्ट देखता हूँ, इन्होंने 50-50 हम लोगों ने इस पार्टनरशिप में विलेजेस को टारगेट किया कि हम लोग ऐसे प्रोमिनेंट या ऐसे जहाँ हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, जोन हैं, वहां के विलेजेस को आइडेंटिफाई करके उन VCPCs को फंक्शनल करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर एनजीओ वहां पर ना भी हैं तो भी ओनरशिप के साथ वो कमिटीज फंक्शनल बने, एक्शन टेकर मोड में आए और वो बाल विवाह को रोकें। तो मुझे खुशी है कि आज मोर देन 500 कमिटीज ऐसी राजस्थान, सदर्न राजस्थान में हम लोग फंक्शनल कर पाए हैं, उनके सरपंच एक्टिव हुए हैं, उनको ट्रेनिंग मिला है, ओरिएंटेशन मिला है, और आज इन सारे सरपंच ने अपनी पंचायतों में अपने एक प्लेज लिया है। बहुत सारे सरपंच ने नारे भी लिखवाए कि आप बाल विभाग की सूचना हमें दें, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। मतलब वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं अपने ऐसे लोगों को जो उनको सूचना दे रहे हैं। तो ये जो एक बदलाव रहा, इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। अब बात करते हैं हम प्रशासन की। तो डेफिनेटली प्रशासन की ओर से जो हमारा एक ऑर्डर जो रिलीज हुए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था जीआरसी नेटवर्क के थ्रू हाईकोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किया गया कि इतने बाल विवाह की संभावना है, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर हो। तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पीआईएल पर गौर किया और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि सरपंच और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो सीडब्ल्यूपीओ हो, इन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से ऑन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट डीएम तक भी जो ऑर्डर आने चाहिए, उस पर जितना संज्ञान काम होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली जीआरसी ने ना केवल ट्रेनिंग्स और इनके माध्यम से लोगों को ओरिएंट किया, बल्कि लीगल कंप्लायंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो आज ये दोनों साथ मिलकर, हमारे एनजीओस भी, सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर भी, और साथ साथ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में आकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रयासरत हैं।
11: So I think what Dr. Pandya is trying to say there is also how important communication is at every level when it comes to an issue as serious as child marriage. Karminder ji, aap se bhi poochna chahungi, as CMPO, aap administration ka hissa hai, to aap tamam NGOs aur sansthano ke saath milkar kaise kaam karte hain? We just heard communication itna bada role play karta hai in cheezon mein. कि वो आपको खबर आके दे और फिर आप एक्शन ले, प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है?
9: जी, कानून अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारी एनजीओज हैं, जिसमें जेआरसी और एमडीडी तो हैं ही, जो बहुत ज़्यादा कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे भारत ज्ञान विज्ञान समिति है, हिम्मत है रोहतक में, हरियाणा में, जो महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो वो जो लोग हैं एनजीओज के, वो हर रोज़ पब्लिक के बीच में होते हैं
11: जी।
9: और उनको वो अवेयरनेस का काम करना है, साथ में हम कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम मिलके ही करते हैं, एक जगह पे जाते हैं और वहाँ मिलके विद बैनर्स हम लेते हैं, वहाँ पे अपने पैम्फलेट्स भी बांटते हैं लोगों को। और हरियाणा सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे हरियाणा में हर ज़िले में हमारे बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं, होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिन पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, हमारा नाम, नंबर, एड्रेस बाल विवाह के खिलाफ। तो इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर लग गए, स्कूल्स के बाहर लग गए, पुलिस थानों के बाहर इस तरह के होर्डिंग्स लग गए, गाँव में जगह मंदिरों में हमने रिलीजियस प्लेसेस पे ये लगाए, और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हमने मिल के काम किया। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि कहीं शादी हो रही होती है तो लोग रिपोर्ट करते हैं
11: जी।
9: एमडीडी का तो कैडर है ही, जो नीचे हैं लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा बोर्ड पढ़ के भी बहुत लोग इन्फॉर्म करते हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब कोई देखता है तो 112 पे या हमारे नंबर पे या जस्ट राइट के नंबर पे, एमडीडी के नंबर पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किए हुए हैं अपने अपने ज़िलों में ये, तो हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं, फिर हम मौके पे संबंधित थाने की पुलिस को लेके जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को हम समझाते हैं कि आप शादी करोगे तो उसके ये इम्पैक्ट होंगे, एफआईआर दर्ज होगी, जेल में जाओगे। साथ में हरियाणा सरकार ने 2020 में एक नियम लागू किया था कि जो नाबालिग की शादी है उसको कोई वैलिडिटी नहीं रही है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। तो हम उनको बताते हैं कि आप ये शादी करोगे तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई लीगल कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिल सकते हैं, लड़की के लीगल राइट्स हैं। और अगेन मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि मैंने तो खास तौर पे शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, कि शादी चलाने के लिए जितना कमिटमेंट, जितनी मैच्योरिटी चाहिए, वो एक बच्चे में नहीं हो सकती, और जब बच्चा शादी के लायक होगा तब तक उसके बच्चे हो चुके होंगे। तो ना तो बच्चे ढंग से बड़े हो पाएंगे, ना वो मदर ढंग से उन बच्चों की देखभाल कर पाएगी, उसके हेल्थ इम्पैक्ट अलग से हैं, लीगल इम्पैक्ट्स अलग से हैं। तो ये सारा मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त लोगों के बीच में कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ही कैंपेन मोड में ही हम लोग ये काम करते
11: हैं। Foot soldiers on the ground, and you're doing such a fantastic job. My last question to you is to you, Mr. Ravikant. As we mentioned earlier in the show, there are still some states that show a rise in the percentage of child marriage. Delhi, Punjab, Goa are among them. Can we still say, is India moving towards the tipping point to end child marriage by the year 2030, sir?
13: 100%, India will reach the tipping point at this decline, 3% decline, and there will be further decline because of the momentous work which have happened. India will see the end of child marriage. As I said, that this generation will end the scourge of child marriage. We have also to understand that child marriage is sexual exploitation of young girls.
11: Of course.
13: And that is what the Supreme Court of India says, that is what we at JRC say, that this is sexual exploitation of, and it's a very serious crime because of the protection of POCSO law which we have. Apart from that, the Honorable Supreme Court of India, in the landmark judgment filed by the JRC partner, has said that, has created convergence mechanisms at the district level, like ASHA committees, which bring in all the administration, civil society and everyone together. There at that level, we are engaging with district agencies and bringing in that catalytic change which can happen because of people coming together. That sends a very strong message. So increase in prosecutions, strengthening of education system, implementation of the law, bringing the fear of the law among the people, community engagement, girls' education together. And also, due to this landmark judgment, lot of state governments have launched their state action plan. The government of India has launched its action plan on ending child marriage. With this huge focus by the government and the big momentous work being done by Just Rights Partner at the ground, and this year we are going to engage across the country, not only 450 district, but across the country we are going to run this campaign. We are going to do it very aggressively because we want to end this, we want to reach the tipping point.
11: And you're saying in 4 years from now, that tipping point will
13: come. Yes, 100%, we are very sure.
11: All right. Now, the NFHS6 shows that structural change is possible. The synchronized efforts of governments, legal institutions, faith leaders, and networks like Just Rights for Children prove that child marriage is not an unchangeable reality. If we maintain this momentum, sustain the pressure, and protect our girls' right to education, a child marriage-free India is well within our reach.

0: We have arrived at Farm to Fuel, an award-winning initiative that is changing how farmers handle agricultural waste. The core challenge of crop residue isn't just processing it. It's collecting thousands of acres of loose straw in a tight 30-day window before the next planting season.
1: Sun is shining on us and so is this gentleman. Abhinder ji, bahut swagat hai aapka NDTV par. Farm to Fuel actually karta kya hai?
2: फार्म टू फ्यूल बेसिकली हम जो जितना भी एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ पेडी स्ट्रॉ हो या गन्ने के बाद जो भी खेत में रेजिड्यू रह गया, शुगर केन ट्रैश है, कॉटन स्टिक्स हैं, तो उसको कलेक्ट करके उसका एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं. वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो CBG यूज़ कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है या पैलेट प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, अल्टीमेटली तो उससे एनर्जी निकल रही है.
3: To achieve this, Farm to Fuel relies on heavy-duty German baler machines. A single machine can clear almost 70 acres of agricultural residue in just one day, compressing loose straw into compact, transportable bales. Last season alone, they cleared 26,000 acres, reducing an estimated 56,000 metric tons of carbon emissions.
1: Now, how did you convince farmers, or did you have to convince them, or if yes, how long did it take? What was their reaction like?
2: Initially, farmer, whatever he is doing, it has been the farming in Punjab, it's traditional. Mm-hmm. So if you have to bring the change, you have to give him some, for example, the other baler, other guys who operate balers, they charge farmer 1,000 rupees, 1,500, 2,000, whatsoever. So when I started, I said I won't charge any farmer, I'll do it for free. Mm-hmm. So when I incentivized it, they thought, okay, this guy is doing it for free. So it helped me reach masses. So I could reach the target of 26,000 acres.
0: For generations, farmers have been caught between a rock and a hard place. Clearing fields mechanically was highly expensive, leaving fire as the only viable option for small-scale landholders, despite the legal and environmental risks.
1: Since we're discussing farming and stubble burning, it's important to hear it straight from the horse's mouth. We have some farmers here. Sashikal ji, bahut bahut swagat hai is show de vich. Sab toh pehla sawal hai hi ki kyunki hun ta bahut sare solution hai gane parali nu leke, par us toh pehla kis tarah diyan pareshaniyan tuhanu jarniyan pendiyan sigiyan jad parali handle karan di gall hundi?
4: Matlab parche kat dinde jadon parali nu agg launde sige, te baaki janwaran di vi death toh ho jandi sige ohde naal.
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
4: ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ?
1: ਬਿਲਕੁਲ,
4: ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.
1: ਫਾਰਮ ਟੂ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ?
4: ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਟ, ਤਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਣ ਫਰੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ.
1: So what they're essentially saying is that, you know, every time they had to manage stubble, it invited costs and of course several other risks, along with some, you know, complaints that police would file against them. So all of that gets sorted, all of that has one-stop solution, which is Farm to Fuel in this case. What about pallets? Like, how do you make them and what really eventually happens?
2: Eventually electricity happens. But so जो आपने बेल्स देखी, उतनी बड़ी बेल्स को ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है. तो उसका एक सोल्यूशन निकाला कि उसको छोटे फॉर्म में, कम्यूटेबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ट्रक्स में भर के. तो ये जो पराली है, इसको पहले श्रेड करते हैं, श्रेड करके हैमर में डालते हैं, उसको डीसाइज करते हैं, डीसाइज करके फिर एक पैलेट मशीन होती है जिसके अंदर पराली जाती है, इसके छोटे छोटे पैलेट्स बन जाते हैं. तो वो पैलेट्स फिर ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गए, उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है. मतलब अगर आप वैसे देखोगे कि 10 टन पराली पड़ी है, उसका वॉल्यूम बहुत होगा,
1: लेकिन
2: हाँ वो डेंस हो जाएगा और पैलेट्स की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है. तो फिर थर्मल प्लांट फिर फर्दर उसको अपने कोल के साथ जला सकता है.
1: पैलेट्स आर नो लेस देन बुलेट्स,
2: इट्स एक्चुअली वो बुलेट्स के साइज का ही होता है.

0: They are very close to stalling speeds. And anything going wrong at this stage, and if the controls are not handled properly, or if there's any grave emergency, I don't know anything about this accident as yet, but it could be any of those reasons which could come out. And proximity to the ground, very close to the stalling speeds, and the results invariably.
1: Moving on now, a fresh political storm has erupted over Shiv Sena UBT MP Sajay Raut's remarks targeting Prime Minister Narendra Modi. Raut described the Prime Minister as an aghori figure in politics and drew a controversial comparison with Aurangzeb, saying Prime Minister Modi comes from the same soil where the Mughal ruler was born. BJP has hit back strongly, accusing Raut of repeatedly insulting the Prime Minister. The party says the remarks reflect the opposition's hatred for Prime Minister Modi and has linked the attack to what it calls Congress and its allies' frustration over the electoral defeats. Let's listen in to what Sanjay Raut said and then we'll get you the BJP reactions as well.
2: Itna aghori vyakti desh mein kabhi paida nahi rajneeti. Itna crude kabhi nahi paida. Ye desh mein Pandit Nehru, Indira Gandhi, Lal Bahadur Shastri, Narasimha Rao, राजीव गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में इस मिट्टी में जन्मे हैं. लेकिन जब मैं हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं मोदी जी का, तो डर लगता है ये कहाँ से पैदा हो गए. जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं. गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना.
3: संजय राउत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली बकना यह स्पष्ट करता है कि आज पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अपने परिवार को बचाने के लिए 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रहा है. ये इंस्पायर होते औरंगजेब घोरी गजनी से, इसीलिए जाकर इनको लगता है कि हर वो व्यक्ति जो देश की सेवा करता है उसको ये अब्यूज करते हैं. आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो संजय राउत हो या कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी के कहने पर 140 करोड़ के देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को गाली इसीलिए बकते हैं क्योंकि इन्होंने परिवारवादी गांधी वाड्रा परिवार को विपक्ष में बैठाया है और देश की जनता ने विपक्ष में बैठाया है. आज ये स्पष्ट हो गया कि गांधी वाड्रा परिवार और उनके पूरे अलायंस पार्टनर्स, भले वो संजय राउत हो या कोई और, ये लोकतंत्र से नफरत करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नफरत करते हैं, इंडियन स्टेट से नफरत करते हैं.
1: Well, moving on, it's double trouble for former Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Amid rebellion, headache, now Mamata is facing legal heat on one front. An FIR has been registered against her over alleged communal remarks made ahead of the state elections, with complainants accusing her of promoting communal disharmony through her speech. On the other hand, a separate probe has now been ordered into an alleged 635 crore advertising scam involving a prominent Kolkata-based ad agency, which is believed to be close to the former chief minister. Authorities are examining a series of high-value transactions routed through multiple bank accounts. NDTV learns that ED could also step in to probe the money trail. Let's listen in to Mamata Banerjee.
4: Amra achi bole na. আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম মাসে এক সেকেন্ড লাগবে. একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে.
5: বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন. 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে. এরও তদন্ত হবে. তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো. আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি.
1: A political team meanwhile carried out a midnight raid at the Kolkata residence of TMC leader Abhishek Banerjee in search of his secretary Sumit Roy. The search operation continued till around 8 a.m. and took place in the presence of both Abhishek Banerjee and the TMC chief Mamata Banerjee. However, Sumit Roy was not found at the residence. According to sources, police have been looking for Roy for several days in connection with a case involving alleged transfers of crores of rupees to his bank account. TMC has denied all allegations against Sumit Roy, calling the police action political vendetta and claiming false information is being leaked to the media. On the other hand, the BJP took a swipe at the TMC, saying those involved in corruption must face investigation and action. Let's listen in to these reactions we are picking up.
6: करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयेश कर रहे, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। जो भी हो, मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए, लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं।
1: मूविंग ऑन टू येट अनदर कॉन्ट्रोवर्सी, द कॉन्ट्रोवर्शियल ओवर द वायरल कॉमेडी क्लिप्स इज नाउ एस्केलेटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। कॉमेडियन प्रणित मोरे, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued an apology saying he takes full responsibility for the controversy. KEM Hospital has questioned student Sejal Pawar and is considering disciplinary action after she submitted a written apology. Meanwhile, social media influencer Himanshu Jagra also faces action after being summoned by the National Commission for Women. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has condemned the remarks as the investigations continue and authorities examine the viral content.
7: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी, मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
1: Viewers, it's time to slip into a short break, but news and updates continue on NDTV. Keep watching.

0: क्या छूट गया है जिसे वापस पाना है, इसी सवाल का जवाब लेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से, इम्तियाज अली और वेदांग रैना। आप दोनों का एनडीटीवी स्टूडियोज में स्वागत है। इम्तियाज, हम फिर मिल रहे हैं लेकिन एक नई फिल्म के साथ। मैं वापस आऊँगा, मैं दो थ्रेड्स हैं जब मैंने फिल्म देखी जो स्क्रीनिंग हुई है, एक थ्रेड लव स्टोरी की है, दूसरा थ्रेड पार्टीशन का है
1: जी।
0: आपको क्यों लगा ये दोनों थ्रेड को आपको इंटरट्वाइन करना है और एक नई फिल्म बनानी है?
1: जब मैं चमकीला की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो मैं ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था, और उनकी कहानियों में मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया। जा करके दूर दराज इलाकों में भी जा करके उनसे मिलना शुरू किया मैंने, और वो लोग बहुत आसानी से दिल्ली या पंजाब में आपको दिखते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो उसमें पार्टीशन की बातें ज़रूर थीं, उसमें दुख दर्द की भी कुछ बातें थीं, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उनको प्यार हुआ करता था या प्यार अभी भी है। किसी ने मेंशन किया कि मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, और जब आज 78 ईयर्स हो गए पार्टीशन को, वो उस गुड़िया को याद कर रही हैं कि वो गुड़िया मेरे साथ नहीं आ सकी, वो ताक पे रखी थी, मेरी छूट गई। कोई याद कर रहा है कि मेरा पेड़ था वहाँ, बड़ा खूबसूरत था। मेरे एक पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने रावी के किनारे पर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की थी जो मेरे बाबूजी के दुकान में आया करती थी, मैं उसे देखने आता था। एक लड़का था जो गली से गुजरता था, मुझे मालूम था वो मेरे लिए आ रहा है। दे वर टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड लॉन्गिंग। अब मुझे लगा कि शायद ये जो एक नैरेटिव है ना, ये आया नहीं है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी जो दिल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उनको अभी तक इतनी दूर तक लाया है। दे हैव बीन एबल टू ओवरकम द डिज़ास्टर ऑफ पार्टीशन बिकॉज ऑफ द लव इन देयर हार्ट्स। दीज टू थ्रेड्स आर एक्चुअली इंटरट्वाइंड।
0: वेदांग, आपने कहा कि आपका आपकी जो एज ग्रुप है उसका किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में, आप तो उनके दादाजी बने हैं। तो ये बताइए कि जो लव स्टोरी इम्तियाज कहते हैं, जो पिछड़ जाने की लव स्टोरी, जो छूट जाने की कहानी, वो आज आपके जनरेशन में समझ में आएगी? क्योंकि आज तो ऐप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप का ज़माना है, जैसा कि इम्तियाज़ लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि वक्त नहीं रहता लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यू डोंट हैव टू परस्यू टू मैनी पीपल लाइक फॉर टू लॉन्ग अ टाइम। तो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपके जनरेशन?
2: एक तो ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन है जहाँ मुझे लगता है कि हमें हर कहानी से रिलेट एनीवे नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिलेट टू एवरी स्टोरी, क्योंकि कोई कोई स्टोरीज़ आप देखते हो एंड यू एस्पायर ऑल्सो एंड यू वॉन्ट दैट ऑल्सो इन योर लाइफ, जो मैं इस कहानी के लिए फील करता हूँ। जैसे मुझे भी वैसा प्यार चाहिए, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और हमारे जनरेशन में ये फीलिंग आई थिंक मोर देन बिफोर होगी, क्योंकि हम ऐप्स के ज़माने में, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के ज़माने में, तो हम ऐसी लव स्टोरी को देखेंगे और शायद सोचेंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और वो फीलिंग मुझे लगता है सबके अंदर है, क्योंकि अगर आप देखोगे और आप लोगों से बात करोगे, मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से यही फील होता है कि लोग चाहते वो हैं। अंदर अंदर पीपल आर डाइंग फॉर यू नो द जनरेशन ऑफ फॉर दैट लव स्टोरी ऑफ जब चिट्ठियाँ लिखते थे और जब आँखों आँखों में ही सब चीज़ें हो जाती थी। सो आई थिंक वी आर चेजिंग दैट समवेयर, आई फील लाइक दैट एंड आई कैन स्पीक फॉर माई जनरेशन कि हम वो चेज कर रहे हैं।
1: कल भी हमने थिएटर में देखा, जो यंगर लोग थे ना,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
14: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
15: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
2: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
3: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
4: Gender parity to be reflected. While we choose leadership as well.
5: It's also important that how they are reshaping the industries.
6: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
8: वाओ मामा क्या स्वाद है
7: अरे मेरे राजा
9: सबका राजा आर प्योर मसाला
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
11: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स दिस इज अबाउट हाउ यू मूव
12: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस
13: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी
14: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट

0: Says that rebel MPs will hold a key meeting tomorrow in the national capital. It's also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be landing in the capital to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
1: देखिए उन लोग को करना है करिए, उन लोग को अभी बीजेपी का सेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा, समझा ना। ये फोर्थ मई का बाद सब डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ एक रीजन देके बोल रहे हैं, प्लॉय सब, लेकिन उन लोग का चीफ मिनिस्टर का साथ रहने का आदत हो गया, चीफ मिनिस्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग क्या बोला, प्लॉय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने नहीं सकता है, क्या वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेगा।
2: जो सुधीर बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया, और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
3: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना, पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है, जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
4: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
5: बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते, बीजेपी की जिस तरीके से जीत के बाद उन्होंने उनमें एक और हौसला बढ़ गया है कि हम एजेंसीज का दुरुपयोग कर डरा कर धमका कर या इंसेंटिवाइज कर लोगों को अपनी तरफ लेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नंबर का खेल हो चुका है। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज अबाउट नंबर्स, कि हमारे पास राज्यसभा में इतने नंबर्स आ जाएं, लोकसभा में इतने नंबर्स आ जाएं, तो हम अपने बिल्स पास कर पाएंगे। अदरवाइज राजनीति का कोई महत्व नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स नहीं।
6: बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिल पास करानी है, और यहाँ के सारे एमपी गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए, और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे।
7: टीएमसी का जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के वो जो अलग ब्लॉक बना रहा है, वो ब्लॉक का एनडीए को हिस्सा ले रहा है, एनडीए को पास जा रहा है, लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है, अब टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है।
0: While TMC faces the worst survival crisis it has seen ever since its breakaway from the Congress party. Let's take this question to our guests as well. Manav Jaiswal, the spokesperson of the Trinamool Congress, is joining us on the broadcast. We have Rajat Sethi, who's a political analyst. We have Nikhil Jain, who's a political analyst. And Jayant Ghoshal, who's a senior journalist, joining us on the broadcast. Good evening, gentlemen.

0: capital. It's also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be landing in the capital to hold a meeting with the rebel camp.
1: तीन को जो लोग उधर चला गया वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
2: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री.
3: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किए है ना, पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
4: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी. और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
5: बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते, बीजेपी की जिस तरीके से जीत के बाद उन्होंने उनमें एक और हौसला बढ़ गया है कि हम एजेंसीज का दुरुपयोग कर डराकर धमकाकर या इंसेंटिवाइज कर लोगों को अपनी तरफ लेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे. भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नंबर का खेल हो चुका है. इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज अबाउट नंबर्स. कि हमारे पास राज्यसभा में इतने नंबर्स आ जाए, लोकसभा में इतने नंबर्स आ जाए तो हम अपने बिल्स पास कर पाएंगे. अदरवाइज राजनीति का कोई महत्व नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक एथिक्स नहीं.
6: बीजेपी अपना सदन के अंदर अपना संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिल पास करानी है. और यहाँ के सारे एमपीज गन ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी. इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे.
7: टीएमसी का जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के वो जो अलग ब्लॉक बना रहा है, वो ब्लॉक का एनडीए को हिस्सा ले रहा है, एनडीए को पास जा रहा है. लेकिन ये लोग आम आदमी को साथ गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है.
0: The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as controversy gathers more momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked the backlash. The fallout has also reached the KEM hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology. Well, after she offered that she will give a written apology, there is

0: जो भी पावर्ड एयर टैक्सी।
1: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
1: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक।
1: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
1: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: क्या छूट गया है जिसे वापस पाना है? इसी सवाल का जवाब लेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान से, इम्तियाज अली और वैदाग रैना। आप दोनों का NDTV स्टूडियोज में स्वागत है। इम्तियाज, हम फिर मिल रहे हैं लेकिन एक नई फिल्म के साथ। मैं वापस आऊँगा, मैं दो थ्रेड्स हैं जब मैंने फिल्म देखी जो स्क्रीनिंग हुई है। एक थ्रेड लव स्टोरी की है, दूसरा थ्रेड पार्टीशन का है
1: जी।
0: आपको क्यों लगा ये दोनों थ्रेड को आपको इंटरट्वाइन करना है और एक नई फिल्म बनानी है?
1: जब मैं चमकीला की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो मैं ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा था और उनकी कहानियों में मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया। जा करके दूर दराज इलाकों में भी जा करके उनसे मिलना शुरू किया मैंने, और वो लोग बहुत आसानी से दिल्ली या पंजाब में आपको दिखते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो उसमें पार्टीशन की बातें ज़रूर थी, उसमें दुख दर्द की भी कुछ बातें थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे उनको प्यार हुआ करता था या प्यार अभी भी है। किसी ने मेंशन किया कि मेरी एक गुड़िया छूट गई थी, और जब आज 78 ईयर्स हो गए पार्टीशन को, वो उस गुड़िया को याद कर रही हैं कि वो गुड़िया मेरे साथ नहीं आ सकी, वो ताक पे रखी थी, मेरी छूट गई। कोई याद कर रहा है कि मेरा पेड़ था वहाँ, बड़ा खूबसूरत था। मेरे एक पिताजी के एक दोस्त हैं, उन्होंने रावी के किनारे पर पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की थी जो मेरे बाबूजी के दुकान में आया करती थी, मैं उसे देखने आता था। एक लड़का था जो गली से गुजरता था, मुझे मालूम था वो मेरे लिए आ रहा है। दे वर टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड लॉन्गिंग। अब मुझे लगा कि शायद ये जो एक नैरेटिव है ना, ये आया नहीं है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी जो दिल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उनको अभी तक इतनी दूर तक लाया है। दे हैव बीन एबल टू ओवरकम द डिज़ास्टर ऑफ पार्टीशन बिकॉज ऑफ द लव इन देयर हार्ट्स। दीज टू थ्रेड्स आर एक्चुअली इंटरट्वाइंड।
0: वेदांग, आपने कहा कि आपका आपकी जो एज ग्रुप है उसका किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में, आप तो उनके दादाजी बने हैं। तो ये बताइए कि जो लव स्टोरी इम्तियाज कहते हैं, जो पिछड़ जाने की लव स्टोरी, जो छूट जाने की कहानी, वो आज आपके जनरेशन में समझ में आएगी? क्योंकि आज तो ऐप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप का ज़माना है। जैसा कि इम्तियाज़ लगातार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि वक्त नहीं रहता लोगों को, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, यू डोंट हैव टू परस्यू टू मैनी पीपल लाइक फॉर टू लॉन्ग अ टाइम। तो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपके जनरेशन?
2: एक तो ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन है जहाँ मुझे लगता है कि हमें हर कहानी से रिलेट एनीवे नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिलेट टू एवरी स्टोरी, क्योंकि कोई कोई स्टोरीज आप देखते हो एंड यू एस्पायर ऑल्सो एंड यू वॉन्ट द

0: देखोगे और आप लोगों से बात करोगे, अब मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से यही फील होता है कि लोग चाहते वो हैं अंदर अंदर, पीपल आर डाइंग फॉर यू नो द जनरेशन ऑफ फॉर दैट लव स्टोरी ऑफ जब चिट्ठियाँ लिखते थे और जब आँखों आँखों में ही सब चीज़ें हो जाती थी. सो आई थिंक वी आर चेजिंग दैट समवेयर. आई फील लाइक दैट एंड आई कैन स्पीक फॉर माई जनरेशन कि हम वो चेज कर रहे हैं.
1: कल भी हमने थिएटर में देखा जो यंगर लोग थे ना वो ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जैसे कि दिलजीत के जो कैरेक्टर प्ले
2: दिलजीत एग्जैक्टली वही दिलजीत का कैरेक्टर वही रिप्रेजेंट करता है,
1: वही रिप्रेजेंट करता है जो निर्वैर ग्रेवाल है. वो आखिर में वो यही कहता है कि उस जमाने की मोहब्बत, उस टाइप का प्यार हमें क्यों नहीं मिल सकता, यही तो मैं चाहता हूँ. एक्चुअली उसका दिल वहाँ टूटता है कि यही तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं वो 78 ईयर से किसी को अपने दिल में रख करके चल रहे हैं और मैं यहाँ 7 weeks भी कहीं रुक नहीं पाता हूँ. Why can't I be like him? So actually the story is also about this generation seeing that generation.
2: Imtiaz, aap is film ko dekh kar kis ehsaas ke saath aapki audience jo hai wo ghar laute?
1: Hopefully wo kahe ki main wapas aaunga is film ko dobara dekhne. But thoda sa dil khule insaan ka. I think is film mein bhi agar itna ho jaye ki people get attached to their own emotion, then I'll think this movie is a success.
2: Vedanga, Imtiaz Ali ki film hai, co-stars mein Diljit Dosanjh hai, Nasiruddin Shah hai, aap gaana bhi gaate hain, jisko music direct kiya hai Yaar Rehman ne, to sab taraf masters hain aapke ird gird is film mein, aur aapne awaaz bhi di hai. Do line hamare darshakon ko sunaiye, jab wo jayenge cinema dekhne to kya sunne wale hain Vedanga ki awaaz.
0: तो एक गाना है मस्कारा हमारी फिल्म से जो रहमान सर ने कंपोज़ किया है और निलंजना ने गाया है, और उसमें मैंने भी दो लाइनें गाई हैं, तो मैं वो दो लाइनें गाऊंगा आपके लिए.

0: अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से। अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है, एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है। उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है।
1: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री।
2: दी पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट, वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, मुशरफ हुसैन हैज बीन मेड प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सेल, एंड द मेन थिंग इज दिस मीटिंग कंडेम द अट्रोसिटीज ऑन द तृणमूल वर्कर्स।
3: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए। तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है, जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है। तो जो हो रहा ठीक हो रहा,
4: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
5: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.

0: मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा।
1: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक।
1: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
1: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: ഗാന്ധിയുടെ സംസാര രീതി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ വേദിയെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
1: CPIM has taken up certain issues in the India bloc meeting. The most important point was that during the Kerala election campaign, AICC President Sri Mallikarjun Khargé, leader of the opposition Lok Sabha Sri Rahul Gandhi, and other important national leaders of Congress repeatedly accused that CPIM and the LDF is having a secret deal with BJP, which is a preposterous allegation. Similarly, they all raised the issue why Kerala, the then Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, is not arrested by enforcement director.
2: The rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage as the rebel TMC MPs prepare for their next and final strike. There are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camp's meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupendra Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting in the national capital, and has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to Delhi to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
3: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
4: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AICC.
3: Sir, when did you resign?
4: I accept the resignation immediately.
3: Okay, and when did you resign, sir?
4: Today.
3: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
4: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
3: All right.
4: But you can take it for granted that I was not willing. In the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
3: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
4: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress president earlier.
3: Right.
4: My Congress life was 52 years. So, you know that. After that, I joined the Congress. But present situation is not very compatible to work very freely, and the situation is very, very critical.
3: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
4: I will not highlight. I will speak to the people and the press after some time.
5: तीन को जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमिटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
6: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री.
7: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट. वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, Musharraf Hossain has been made president of the minority cell, and the main thing is main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
8: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
9: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
2: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड.

0: main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
1: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किए है, ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है. तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
2: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी. और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
3: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
2: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneeth More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology, stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
3: आप सबने मेरा एक क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा।
2: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
4: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक।
2: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
5: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
2: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
6: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter, Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: Congress repeatedly accused that CPIM and the LDF is having a secret deal with BJP, which is a preposterous allegation. Similarly, they all raised the issue why Kerala, the then Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, is not arrested by enforcement director.
1: The rebellion in the Trinamool Congress has now reached a decisive stage as the rebel TMC MPs prepare for their next and final strike. There are hectic parleys in the national capital ahead of the rebel camp's meeting with Lok Sabha Speaker on Monday. Two rebel TMC MPs, once believed as close aide of Mamata Banerjee, Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay, met Union Minister Bhupendra Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting in the national capital and has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to Delhi to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
2: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
3: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AITC.
2: Sir, when did you resign?
3: We have to accept the resignation immediately.
2: Okay, and when did you resign, sir?
3: Today.
2: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
3: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
2: All right.
3: But if you can take it for granted that I was not willing. In the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
2: You were unhappy with the present affairs is what you're saying.
3: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress president earlier.
2: Right.
3: My Congress life was 52 years. So, you know that. After that, I joined the Congress. But present situation is not very compatible to work very freely, and the situation is very, very critical.
2: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
3: I will not highlight. I will speak to the people and the press after some time.
4: Tinko jo log udhar chala gaya, wo alag block banana raha hai, usko hata diya hai working committee se. अच्छा दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
5: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री.
6: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट. वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, Musharraf Hossain has been made president of the minority cell, and the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
7: Zindagi mein kuch nahi kiya hai, kuch nahi kiya hai, na public ke liye na koi party ke liye. To अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा।
8: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है, हर काम बीजेपी करेगी। और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
1: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.

0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal,
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
3: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा.
2: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
4: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक.
2: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
5: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
2: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under 19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making

0: responsibly disclose aid of Mamata Banerjee. Shatabdi Roy and Sudeep Bandyopadhyay met Union Minister Bhupendra Yadav at his residence in New Delhi. NDTV has learned from its sources that the rebel MPs will hold a key meeting in the national capital, and has also been told that Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will be coming to Delhi to hold a meeting with the TMC's rebel camp.
1: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
2: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AITC.
1: Sir, when did you resign?
2: It was hard to accept the resignation immediately.
1: Okay, and when did you resign, sir?
2: Today.
1: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
2: Look, I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
1: All right.
2: But you can take it for granted that I was not willing to vote in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
1: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
2: Yeah. Very, very unhappy. I was Pradesh Congress President earlier.
1: Right.
2: My Congress life was 52 years.
1: Mm-hmm.
2: So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
1: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
2: I will not highlight. I will speak to the people and the press after some time.
3: तीन को जो लोग उधर चला गए वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
4: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री.
5: दी पीपल हु हैव लेफ्ट defected, they are weeded out. We have a new youth president, Arnab Banerjee, Mahila president, Alifa Ahmed. Kunal Ghosh has been selected president of the North Calcutta. Musharraf Hossain has been made president of the minority cell. And the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
6: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए है, तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
7: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे।
0: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight. India Inc's
2: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneeth More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
3: आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
2: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
4: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक।
2: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
5: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी कड़ी

0: resignation letter we were hearing.
1: I have sent my resignation to Chairperson Mukta Banerjee of AITC.
0: Sir, when did you resign?
1: It was hard to accept the resignation immediately.
0: Okay, and when did you resign, sir?
1: Today.
0: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bhunia?
1: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
0: All right.
1: But you can take it for granted that I was not willing to vote in the present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
0: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying.
1: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress President earlier.
0: Right.
1: My Congress life was 52 years.
0: Mm-hmm.
1: So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very critical.
0: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
1: I will speak to the people and the place
2: at a time. तीन को जो लोग उधर चला गए, वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है, उसको हटा दिया है वर्किंग कमिटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमिटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जायगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
3: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये ये ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ. तो ममता जी का ये उन हम लोग बार बार बोले थे, सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री.
4: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड, दे आर वीडेड आउट. वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद, कुणाल घोष हैज बीन सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता, Musharraf Hossain has been made president of the minority cell, and the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
5: जिंदगी में कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं, और इन लोगों के लिए और बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किए हैं. तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी. और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
7: Slipping into a short break, news and updates continue on the other side.
8: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
9: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
10: Higher ed, check the audio, higher ed.

0: happy with the present affairs is what you're saying.
1: Yeah, very, very unhappy. I was Pradesh Congress president earlier.
0: Right.
1: My Congress life was 52 years. So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
0: There are many MPs who highlighted why they resigned. They mentioned about their demands being ignored.
1: I will not highlight. I will speak to the people and the press after some time.
2: तीन को जो लोग उधर चला गया वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से. अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है. एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है. उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट से सुदीप बंदोपाध्याय को चेंज कर दिया है. सुदीप बंदोपाध्याय के निकाल के सुदीप बंदोपाध्याय को जाएगा में कुणाल घोष को उसका प्रेसिडेंट बना गया है.
3: जो सुदीप बनर्जी ने किया है ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है ये तो बार बार बार बार बार बोले थे. सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव. ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया. और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाय वन गेट वन फ्री.
4: द पीपल हु हैव लेफ्ट डिफेक्टेड दे आर वीडेड आउट. वी हैव अ न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बनर्जी, महिला प्रेसिडेंट अलीफा अहमद. Kunal Ghosh has been selected president of the North Calcutta. Musharraf Hossain has been made president of the minority cell. And the main thing is this meeting condemned the atrocities on the Trinamool workers.
5: Zindagi mein kuch nahi kiya hai. कुछ नहीं किया है ना पब्लिक के लिए ना कोई पार्टी के लिए. तो अभी पता चल रहा ममता बनर्जी को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना प्यार करता है. जिन लोगों के लिए वो आज इसी जगह पर पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए वो बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट को बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अमर्यादा किया है. तो जो हो रहा ठीक हो रहा.
6: वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को उनकी पार्टी को तोड़ना है. हर काम बीजेपी करेगी. और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके डरा करके ये काम करेगी. लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी. जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे.
7: स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड.

0: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneet More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology, stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
1: आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था, उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया. और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है, उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ. लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा.
0: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम योर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट. एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माय मिस्टेक.
0: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं. और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
0: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under-19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter, while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and is also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km/h, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI organized competition.